0: ही बहुत है मेरे खून ने रुक संजया, इना ही बहुत है मेरे खून ने रुक संजया, की होया जे पत्तियां ते मेरा नाम नहीं है।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो जी।

0: हर एक हरकत मुका दिती, तू मछली नू जुदा करके मोहब्बत दी सजा दिती। मैं चाहां भी जंजीरा छड़ के किधरे जा नहीं सकदा, मैं सर्दी दे दिना अंदर हर एक बेड़ी जला दिती, कि अजे तीकर भी खुशियां दा कोई नुस्खा न लभ सकिया। मैं सारी उम्र ही प्रयोगशाला विच लंगा दिती। मैं परले पार जाना सी, तू उरले पार आना सी, मलाहां दी लड़ाई ने तां बेड़ी ही डुबा दिती। मोहब्बत दी कहानी तां उदासी तीक पहुंची है, मोहब्बत दी कहानी तां उदासी तीक पहुंची है। मैं जिसनू हार पाना सी उन्हें गर्दन कटा दिती, मैं जिसनू हार पाना सी उन्हें गर्दन कटा दिती।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लेक तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे।

जी का विचार है कि दावे करने विच सिर्फ साड़ा ते ईरखा ही पल्ले पैंदे हन। जिहड़ा बंदा दावे तो बिना निरदावे रहिंदा है ओ निसंग भाव लोक लाज तो परा ओ मुक्त पुरश हुंदा है। ऐसा बंदा तो इंद्र वर्गे दावेदारा नूं भी कंगाल ही समझदा है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हर मैं रेडियो नाल।

प्राप्तियां रमजान रब ही जाने, जित तिहार बस एक पैमाने, चारे पासे एदा पसारा, आखी दुनिया सिरजनहारा, जोगिया नूए राज वखा दे, राजियां तूए पीख मंगा दे, युगा युगा ए अटल देवता, बर्फा विच भी निग सेकता, पेद इसका पौना नहीं सौखा, कंडियां तुरना पैना चोखा, सीस झुकावां मन सदके जावे, जे कोई इसका रूप दिखावे, हो सकता कोई मस्त कलंदर रूह बन बैठा सब दे अंदर, ऐसा कोई योग दवा दियो अंदर बैठा वेखण ला दियो, हर कोई मन्ने जिस दे पाणी, रब दियां रमजां रब ही जाने, रब दियां रमजां।

साल दी उम्र विच भाई बूड़े ने गुरु नानक देव दे चरण परस के प्रश्न कीता सी ते पुछया सी के बाबा जी मौत दा भय किवें मुके। सतगुरां इस दा नाम बाबा बुड्ढा ही रख दिता, क्योंकि ए प्रश्न बच्चियां दा नहीं सी बुजुर्गां दा सी, ते जिस हिरदे विचों ए प्रश्न निकलिया है उत्थे जरूर बुजुर्गी छुपी है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम

जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिय हाथ पैर तन दे पानी तोतै उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ तोए, परिये मत पापा कै संग ओ तोपै नावै के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार।

पाताल लख आकाशा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारह कहन कतेबा।

आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कह न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंग

आखे पड़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कारत कड़ी है बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, ता के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

अस्थिर कर्माणि ते पाहुन दोदाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथिया असनाहा। राग आसा विचों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बोल कि हे मनुख, हे जीव, जिन्ना पदार्था नू पदार्था विच साडा घर भी है, कार भी है, कारोबार भी है, नौकरी चाकरी भी है, साडे आल दुआले जुड़े जिया जंत भी हन, रिश्तेदार भैन भाई, पर यह सब कुछ कुछ पलां दे ने, कुछ पलां दा साथ है। सतगुरु कहिंदे सब मिथिया असनाहा, यह जिन्नी भी समगरी है सब मिथिया होया, साडा इन्हां नाल प्यार है। समा पाके हर एक चीज साडे तो विछड़ जाएगी, खोई जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो नाल निभण वाली केड़ी चीज है? वह है अकाल पुरख का नाम। जिन्हां ने अकाल पुरख के नाम नाल जुड़ना किया, उन्हां दा ही यह मनुखा जन्म सफला होया। ता आओ अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करिए, ते उस अकाल पुरख के नाम विच जुड़न लई ए शब्द नूं सरवण करिए।

सतगुरु पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी राग गौड़ी विच कुछ इउं बख्शिश करदे ने कि सारे संसार दे पदार्थ सब फल सारे शुभ गुण उस अकाल पुरख की कृपा विच समोए हुए ने ते जिसते सिमरन कीतियां दुख दूर हुंदे होन हे जीव तू उस मालिक नूं वसारदा क्यों है। सब पदार्थ सब फलां सर्व गुणा जिस माही क्यों गोविंद मनो विसारिया जिस सिमरत दुख जाहे। खैर दुनिया दे पदार्थ ता अनगिनत हन पर समय समय ते दुनिया दे चार उत्तम पदार्थां दी गल साडे धार्मिक अकीदे विच आउंदी रहिंदी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष राग मारू विच धन गुरु नानक देव पातशाह इन्हां चार पदार्थां बारे इउं जिक्र करदे ने कि जीव तां चारों प्रमुख पदार्थ लैके संसार विच अख खोलदा है ते इसे पदार्थक संसार नूं ओ अपना पक्का कर समझ बैठता है ते इन्हां पदार्थां दी भुख विच ज्यों ज्यों ओ वड्डा हुंदा है उहदी माया दी दौड़ वधदी जांदी है ते ओ दुनियावी पदार्थां दे नाल खजाने भरदा रहिंदा है। चार पदार्थ लै जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मैं खरे। ये चार पदार्थ क्यों कहे जांदे ने जिवें पहला दस्सिया धर्म अर्थ काम मोक्ष ते इन्हां विच्चों हिंदुस्तान दे धार्मिक समाज विच मोक्ष नूं भाव मुक्ति नूं सब तों उत्तम गिणिया जांदा है। मुक्ति हासिल करन लई साडे समाज विच पुन दान तीर्थ यात्रा संन्यास लै लैना शरीरक कष्ट सहणे इत्थों तक के अपने एक विशेष धार्मिक स्थान ते जाके सारा कुछ दान पुन करके अपने आप नूं खत्म कर लेना ये मुक्ति दा साधन समझा जांदा सी। पर सतगुरु दी बख्शिश यूं है कि अकाल पुरख दे हुक्म विच मुक्ति मिलदी है। हुक्म विच ही नरकां वर्गी जिंदगी हुक्म विच ही जीव संसारी ते हुक्म विच ही भगती मार्ग ते चलदा है। हुक्म विच ही जीव होशा ते हुक्म विच ही सियाणा हुंदा है। और कोई अजिहा नहीं कि जीव उपे हुक्म चला सके। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होशा हुक्मे दाना दूजा नाही अवरतड़ा। तो आओ गुरु प्यारियो पंचम पातशाह जी दी बख्शिश वाणी गौड़ी सुखमणी दी तीसरी अष्टपदी दे पंजवें पद विचों ये सिखण दी कोशिश करिए कि असलों सतगुर दी शरण विच रहना ही उन्हां चार पदार्थां दी प्राप्ति है। तो सरवण करदे हां भाई साहिब भाई रविंदर सिंह हजूरी रागी दी आवाज विच ये शब्द चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे।

टेक है, हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना नह सहसा चुके, गुर ए भेद बतावे।

0: इन्ने चंगे जीवन वाले टिके हुए गुरमुख मिलते हैं कि जिन्हां दे दर्शन कीत्या ही मन खिड़ जाता है, मन विच टिकाओ आंदा है, उन्हां दी रसना विच रस है, बचन दे बली हन, बचन सिद्धि भी है। उन्हां नूं सुरत दा टिका ते सुरत दी चढ़दी कला श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी कृपा नाल ही प्राप्त हुई है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: गुरु प्यारियो, सिख मत विच रब्बी कीरत गाउणी ते रब्बी कीरत सुननी दोवां नूं बड़ी महानता मिली है। सतगुरु सानूं रोज समझाउंदे ने, सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रिया पर पूरे। जिथे किते भी उस मालक दी कीरत गाई जांदी है जां सुनी जांदी है, दोवां धिरां दे हिरदे विच सतगुरु जी आप वसदे ने। आओ गुरु प्यारे, इस भाव नूं दर्शाउंदा इक शब्द सरवण करदे हां। हर कीर्तन सुणै हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै। इह पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 190 उपर राग गौड़ी विच दर्ज है। इस दी रचना पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने कीती हुई है। जे शब्द दा मूल भाव सतगुरां कोल पुछिए तां उह इउं समझाउंदे ने, हर बिसरत सदा खवारी, जां फिर हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम भरम पाओ भागे रहाओ, जो इस शब्द दा केंद्री भाव भी है। इस सिद्धांत नूं दृढ़ करन लई बाणी अंदर होर बहुत सारे प्रमाण ने, जिवें हुणे गल कीती है आपां, हर बिसर सदा कवारी, ताको धोखा कहां व्यापे, जाको ओर तुहारी। भाव के अकाल पुरख नूं विसार के ए जीव संसयां विच दुखां विच ग्रस्त रहिंदा है, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ।
2: ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ

त्यो से काहे जग आए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। रागास विचों धन गुरु रामदास पातशाह दे पवित्र बोल जिन्ना ने उस अकाल पुरख का नाम सिमरिया ने उस नु चेता ने कीता उन्हां दा इस जगत विच मनुखा जन्म लेना असफल है। सतगुरु सानू रोज समझाउंदे ने भई प्राप्त मानक देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। वारी मिली है इस करके चेता तो रखना पैना है क्योंकि ए मानस जन्म दुर्लभ है। ए दोबारा नहीं मिलना दुर्लभ बड़े जुद्धा दे नाल मिलिया बड़ा जोर लगा 84 लाख दा गेड़ कटिया फिर ए मनुखा जन्म बनिया। जे ए असी व्यर्थ गवा लिया नाम बिन बिरथा सब जाए नाम जपन तो बगैर ए मनुखा जन्म व्यर्थ जा रहा है। आओ सतगुरां दे इन्हां वचनां नूं मानदे होए इस मनुखा जन्म दा लाहा खटिए व्यर्थ ना गवाईए तां आओ गुरबाणी दे लड़ लग के सरवण करिए गुरबाणी दा एह पवित्र।

पेशगी करते हुए स्वेद दी ताजगी संग ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालवंतो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टीग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। आ जो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटोआं चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो। पेत बारे इटली दी कहावत है कि अपने बटुए अते अपने दिल दी तह कदे नहीं दिखानी चाहिदी। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसलां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट ए यू या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देन लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
4: हरमन रेडियो
5: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे गीत सुनावांगे। हरमन रेडियो।

0: नंबर लिया मैं लहाऊ जमा कार्ड 41 26 53 92 ला भी ठीक है ये तो सीटो सानू सने जरा दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़कां दे एदा सीटो सोने
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा साउथ दी
2: ਆ ਵੀ

0: मैं तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: Do you fear anybody?

0: ഹലോ ഹർമ റേഡിയോ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ
1: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दिया सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने ले संपर्क करो। अकाउंट्स एट harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।, हर्मन रेडियो।, हर्मन रेडियो।, हर्मन रेडियो।